मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरम करते हुए कहते ने, गोपाल गो मैंने पृथ्वी, पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

0: मेरे नेत्रों नू ना छे, मेरी अखां नू कुछ ना आख कांगा, क्योंकि इन्हां नेत्रां च साई दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नू बेचकर मैनू जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरा, जे सो प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर देना, कद आवेगा, इतना समा बिताया अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी सात संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त हेठा बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़िया बोल रही है। फरीद ने तख्या पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़िया बोल दिया हन, मेरी बंदगी दे विच खलड़ पा रही है। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते किया चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी, कहण दी देरी सी, सारियां चिड़िया दरख्त तों डिग पईयां ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गईयां, तड़फ पईयां, दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करने वाले का जरा मन होंदा है वो बड़ा कोमल होंदा है। दुखिया नु वेख के दुखी ते सुखिया नु वेख के मालिक का शुक्र। मन बड़ा नरम, फरीद ने ठंडा सा लिया, ओ पापी मन तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्होंने तेरा की बिगाड़िया, विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, बचन किया चिड़ियों उड़ जाओ, कहण दी देरी सी सारियां चिड़ियां उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावे रब नहीं मिले है, पर रब दी शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया, गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी, प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते किया बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखिया, पानी दा डोल खूह चो कढ़िया ते बाहर डोल दिता, इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे, दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने ए भी बाहर डोल दी। फरीद नू गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं, दो बेरी किया है पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वाल वेख दी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोल दी। गुस्सा आया ते क्या मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी, तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते किया ओ फरीद ए कोई जंगल दिया निखसमिया चिड़िया नहीं, जिन्हां नू मार के जवाल लवेगा, मैं खसों वाली आखो श्री वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। कोई रसना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए, गुरुदरबारे जुड़े हो, सच दा वंद कर रहे हो, आओ भाई सच दे हो पारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने पानी की प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च नचड़िया मार के जवा दी। इंसान ता की उथे हैवान ही कोई नहीं थी, पर तेनू किवें पता लगी? बेटी तेनू किस तरह पता लग गया? इन्हें हस के कहा, मैनू सब पता है, हैं? मैं इतनी बंदगी कीती है, अजे मेरे अंदर अंतर्यामता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ये सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली। अद्धी रात का समा से मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी, तकिया किधरों आई है ये आवाज? वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगिया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नु त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरे अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौ गया सी। आंखों सिरी लाई नींद आ गई, नींदर बड़ी पर्वत है,
1: नींदर बड़ी पर्वत है, कहने थोड़ी उसे भी आ जाती है नींद।
0: जे मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पिया, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी। ए सोच के फरीद मैं अपने पति दे चरणा वल पानी का भरिया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय के बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वल तकिया, भागवान तू इत्थे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगिया सी, पानी का छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानू प्यास लगी है, जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी दा छन्ना पर के खड़ोती हां, मेरे साईं जी पानी पी। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हत्थां तू छन्ना लेके पानी वाला उसने अपने मुंह नाल लाया। फरीद मैं सच कहिंदी हां, ज्यों ज्यों मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आउंदा सी।
2: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातुड़ी सुहाग दणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे। तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे।

न जाने करछी साओ न समले भोजन रस खाने डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने गुजर गोड़स वेच के खलसूड़ी आने

छाय छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाय छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई।

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने ना विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर सवें तिस नाल न फरिए।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्याली है, व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध प्याली है, विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखी है, मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो, हठ मूल न हटे। अपन हथी आपनी जड़ आप उपटे। अपन हथ

लिए सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए उड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी। निंदक

बैखा जै कूणे लसन लुकाया ना लुके बैखा जै कूणे काला कंबल उजला क्यों होए साबूने डेमू खखर जो छु है दिसे मुह सोने किते कम न आवई लावण बिन लूने निंदक नाम विसारिया गुर ज्ञान विहूने हलक

कर दे परवासा। थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

कोड़िया पही करना जुगला पही तेधारिया देखे किता अपना दरक चिपकी सारिया जो आया सो चलसी सब कोई आई मारिया।

रामदास गुरु सच्ची सही एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। वार श्री भगवती जी की पाठ छह दसवीं प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लई ध्याय अंगद ते गुरु अमरदास रामदास से हुई साय अर्जुन हर गोविंद नु सिमरो से राय सिर कृष्ण त्याई है जिन दिठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिये करना उन दयावे ताए दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशी अग स्वरूप जायरा जहूर हाजरा हजूरा कलकला भरपूर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आपकी वाणी की महिमा कही न जाए ध्यान कर।

दान सिखी दान नाम दान राय दान केस दान रुपये दान दाना से दान से अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकिया चंडे बंगल धर्म का जयकार श्री साहब जी सहाय खालसा के बोल वाले मानी महा मत उची मत पत करा था पुरख वाहेगुरु हे साहेब सचे पातशाह साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप का दरबार सजा है पुरानी जना ने हाजरी भरी है कृपा करनी सत्ते हथ रखना मेहर करनी अपनी चरनी लाना सचे पातशाह नाम का छटा बख्शना कृपा करनी सचे पातशाह फुल चुल बख्श के जहां पिता माता आप प्यापो मेहर करो अपनी चरनी लाओ सरबत दे कारज राज करो पंथ नु फतेह बख्शो मेहर करो सिर ते हथ रखो आप दितियां दातां चो आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख हाजर है आप जी नु भोग लगे सीत प्रसाद सात संग जी को वरते जो जी सके सो आप जी का नाम जपे कला वाहिगुरु जी की वरते।

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
1: फतेह। आज्ञा भई अकाल की,
2: चलो
1: बंद सब संत को।

0: होए पिको पिका सदिया पिके पिकी सोए पिका दर गए सटिए मुंह तुका पिके पाए पिका मूर खाखिए मारा ले सजाए महला पहला
1: अंदरों झूठे पहल बाहर दुनिया अंदर फैल अक्सर तीर्थ जिन आवे उतने ना ही मैल।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच ओचन आख रहे हैं, जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे। गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति यह है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की बिद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ए सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ए डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विद ना है, जीन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नू
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आसा जी बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी एक दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा यह गल सुनन नु मिली है, कितनी दफा यह गल ही सुनन नु मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है जा सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नु असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साडे गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नु असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख तो दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र में सुनो।

आप जिन याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जिन बेनती की सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ, वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे दी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख ते सक्सेस नू गुरु बाबा जी तो ही समझना है ना, कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की है। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हाँ, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नू दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउडेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने बड़े बड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखते हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। तो महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किवें नहीं जीना आता, असं तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए, असं डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखदे जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है कहते हैं

अतपात जन अर्थी अनेकाय अनेकाय सज्जन लोड़वंद पुरुष दाता जिन्हें दानी पुरुष होंगे उन्हें पाप जानते हम एक और दानी पुरुष होना उसी उस तरह की माया लिंदा है जिस तरह का उचालता है तो इसी तरह ऐसा करते हम कैसे गुरु सिद्ध आवत है अनेक कैसे गुरु सर्व।

0: और न मांगत हो तुमसे कश चाहत हो के तुम्हें सोई की जाए।
1: शत्रुन सो आते ही रंग की जाए, तुझ मरो तो साथ
0: दी जाए।
1: संत सहाय सदा जग मां
0: के पागर श्याम के भय।
1: संत सहाय सदा जग मां के पागर श्याम के भय। देश मां पर मोहे है, देश मां पर मोहे है, सब सर मन दे कब हूं न करो। देश वा पर मोहे ए है, सब सर मन दे कब हूं न करो। न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखो अपने ही मन को लाल दहों को उतरे, और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल।

0: ना छाडू खालक ना छाडू बालक ना छाडू खालक ना छाडू बालक
1: पर्वत कांडू पूरा शान
0: ईरान के मेरो तो नाम गोविंद सिंह आखेलो मेरो तो नाम गोविंद सिंह आखेलो
2: खिलौना अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रा का खिलाड़ी शस्त्रा का धनी अस खिलौना
0: मेरा तो नाम गोविंद सिंह अस खिलौना।

आन को दान न लागत नीको, आन को दान न लागत नीको, आज के भले इन्हीं को दियो, आज के भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, अग आग करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं के प्रसाद सुख दे, इन्हीं के प्रसाद सुख दे, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

एक जन्म सवार दरगे सच्चे दरगा जाए सचा पिण मल्या सच्चे दरगा जाए सचा पिण मल्या सच्चे दरगा जाए सचा पिण मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका।

0: श्लोक म्हणला पहिला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोवर्धन नाराज भौतिक काते जमाली तन में सखाई मंत्र पूरा प्रतिने बस संत का पाई छोड़ ले पखंडा नाइन ये जयत्रंदा
1: मांस खाने करे निवास श्री नायक तिंगल ताग दिनकर ब्राह्मण पूरे ना

0: नानक रूप होए प्रगटिया,
1: वाहनक रूप होए प्रगटिया।
0: आप केड़े केड़े रूपां च आए ने? वाहनक रूप, अनेका रूप आ जाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज। सत युग तै मानी छलियो बल बामन पायो, मायनक रूप हो प्रगटिया, मावा गोबिंद सिंह वायनक रूप। सत युग तै मानियो छलियो बल बामन पायो, त्रेता तै मानियो राम रघुवंश कहायो, वायनक रूप हो प्रगटिया, वायनक रूप।

0: जो सांस गिरा सत्याए मेरा हर हर सोमर से गुरु मन पावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुरु उपदेश